0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरी बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 Old G Long Road Hoppers Crossing वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ IME एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
3: This station is now the ultimate power in the universe.
4: Radio Haji 16748.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: मेरे नाल ता कोई खेड़ता ही नहीं, सब खोल दे लंग जंदे ने।
4: वादवा प्रोडक्शंस अते पैनोरमा स्टूडियोस पेश करदे हन नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नु वेखण दी कहानी, कणकां दे ओले।
5: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले दी।
4: स्टारिंग गुरप्रीत घुग्गी, तानिया, किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार।
3: हुण दसो मैनू कणकां दे ओले कौन।
4: रिलीजिंग ऑन 31 जुलाई।
3: दसो।
6: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
1: Bale bale bale.
6: Bale bale bale.
1: Thank you.

0: are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME Advisor।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice।

0: चलो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: ब्यूटीफुल हुस्तंदर यार, क्या गाने गांदा, लव हिम, व्हाट अ सॉन्ग है ना, मेरे से कुछ दिल ते लग गया। वो कहता कि थानू की कहता बेसिकली इज ट्राइंग टू से एट सम पॉइंट कि थानू ओदी लोड़ नहीं है भाई आह वीजे दी मेनू कि आई कैन गो एंड सी माय मामा मामी मास्टर एंड है ना नानका, पर सानू तो लेना पैंदा ना वीजा, सो इट हिट्स हार्ड, वेल डन, गुड,
1: इट हिट डिफरेंट,
0: इट हिट डिफरेंट,
1: यस,
0: दैट इज सो राइट, दैट इज सो राइट,
1: यस।
0: ते असी आ गए जी ब्रेक तो बाद दोबारा थोड़े नाल सांझ पाण लई खुले अखाड़े ते,
1: है ना, अखाड़े ते, यस,
0: क्या बात है, मैं भी
1: खुले अखाड़े दे विच की होगा अज, बोलियां,
0: बोलियां, गाने,
1: टप्पे,
0: शायरी,
1: गाने, शायरी,
0: जो
1: whatever,
0: whatever you like,
1: rocks your boat,
0: yeah,
1: बस ओ, पर सारे नहीं इन्ना हुए कि सारे भी उसे enjoy करन,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: इतना नहीं है भी हाय मेरी ता किडनी चकड़ेल पे गई,
0: हाँ प्लीज,
1: इतना नहीं,
0: हाँ,
1: ओ सारा दिन उदा दे ही नागदा हुंदा या, आज दा दिन असी सिर्फ और सिर्फ मस्ती मनाउण लई रखदे आ, फ्राइडे, यानी कि
0: फ्राइडे, फ्राइडे,
1: मौसम देखो कितना बढ़िया है,
0: मौसम अच्छा, मैं जो सवेरे आया इट वाज थोड़ा नेरा नेरा जाना, सो आई डोंट रियली नो कि मौसम किस तरह दा, तुसी थोड़े बढ़िया टाइम ते आए हो,
1: हाउ वाज द मौसम, मौसम हमेशा ही बढ़िया हुंदा है,
0: इन्ना भी थोड़ा ना पॉजिटिव होना चाहिए,
1: नहीं,
0: अच्छा चलो
1: तुसी फिर अपना फोन नाल लेके नहीं तुरदे ना,
0: अच्छा क्यों, मैं ते फोन छड़ नहीं पांदा,
1: नहीं नहीं फोन दी फिर बैटरी च गए करो जिन्नी रहंदी,
0: मेरा तो इन्ना बुरा हाल है, मैं उस दिन स्पेशली नवी वाली देखने गया स्पाइडरमैन, ते मैं वो फिल्म वेखदे हुए भी ना बिना गलो फोन काढ़ लिया, तो मेरे नाल मेरे दीदी से कहते बस कर जा नशेड़ी आदमी अंदर रख दे,
1: यू नो दिस इज एडिक्शन,
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: यू नो इट मींस दैट योर कोर्टिसोल लेवल इज टू हाई,
0: यार सवेर दा तुसी ड्राई आ रहे हो मेनू, रंजोत भाजी मुझे घर जाना है, ये डन हो गया अपना,
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं देखो हर चीज होंगी, पर हाँ जड़ी जड़ी जड़ी बीमारी हैगी वो हैगी है, उन्हें मुकरना नहीं असी,
0: हाँ सही है जी, सही
1: फर्दर डराता
0: फर्दर हो डराओ मेनू ड्राई जाने तुसी मेनू, मैं कहना आप इस चक्कर च इदा करदे फिर कॉल ले लिए,
1: यस प्लीज,
0: लो जी लो कॉल लेने आपा, 227 जी तुसी ऑन एयर हो,
1: 227
0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो,
1: देखो भी आजो जिने आना है,
0: अरे यार संग दे, ओ लागी लागी, हेलो हाँ जी,
2: हेलो हाँ जी, नमस्कार जी, कृष्णा नोर नोनिया जी नो मेरी प्यार भरी नमस्कार,
0: पेरे बना मम्मी हाउ आर यू,
2: ब्लेस यू बच्चे,
0: ठीक है मम्मा, पनीर वाज सो गुड, आई जस्ट हैड इट, मजा आ गया,
2: यू जस्ट

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 0290631618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। I am the advisor.

0: छेती आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: रेडियो हां जी 1674

0: तेनू ओदे नाल मिलाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी।
1: Is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Haji 16748.

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: बात करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमीग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमीग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: हाय, दिस इज इमरान हाशमी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो हाजी।
6: Hay, hay, coli, mare, aquí no se hay, hay, coli.

0: The funniest kids in Australia are here. क्या बात है जी, क्या बात है. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब. मैं हाँ कृष्णा, तुझे सुनो रेडियो. हाँ जी, 1674 AM. दिन है 7 तारीख अगस्त का महीना. सुबह के 8:01 हो चुके हैं. टाइम है लाफ्टर थेरेपी का. और मेरे साथ हंसने के लिए आ गए हैं नोनिया जी.
1: सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, नमस्ते. आई थिंक आई हैव टू चेंज माय रफ्तार टुडे बिकॉज़
0: थोड़ी थोड़ी कहीं मेरी प्रेशर होता है. मैं भी बहुत धीमे धीमे चले हैं, कोई चक्कर वाली गल नहीं. ठीक है,
1: आई कैन बीट इट.
0: अच्छा,
1: दैट्स योर प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड और नॉट. आई कैन बीट यू.
0: मैंने पता नहीं सी मैं कंपटीशन से ये राम.
1: उम्मीद करते जी सारे का फ्राइडे बहुत सोहना चढ़ गया होना. 7-8 क्या सोहनिया तरीका ने. 7-8-8 अज का दिन सोहना हो, सब का बहुत सोहना चढ़े और बहुत सोहना गुजरे भी. डेफिनेटली गुजरूगा क्योंकि असं आस्ते अरदास सिर्फ इसे गल की करते हैं. यस, अज जिन्हों के भी जन्मदिन ने सारे बहुत बहुत मुबारक. एनवर्सरिया ने उन्होंने भी मुबारक. जे तुम कुछ होर शेयर करना चाहते हो
0: मुबारक. हैप्पी बर्थडे टू एनी वन हू इज सेलिब्रेटिंग. मैनू हुण थोड़ा फोमो फील हो रहा, मेरा नहीं है. पर चलो, इट इज व्हाट इट इज. ठीक है,
1: इट्स ओके, इट्स ऑलराइट.
0: आएगा अपना टाइम, आएगा नोनिया जी, आएगा.
1: ऑल इज वेल, ऑल इज वेल कृष्णा जी, ऑल इज वेल.
0: ते हुन वेल करदे आपां बच्चियां दे नाल, ते शुरू करदे आं गल्लां बातां इन्हां दीआं बुझारतां ते इन्हां दे चुटकले ते बोलियां भी. अज तां फ्राइडे आ गया, सवेर गेट नहीं बोलियां. ते शुरुआत करदे आं फिर जी, ओपनिंग बैट्समैन होणगे मन्नत ते फतेह, ते बाद चो तवनीत एंड सिबलिंग्स रेडी रहो.
1: यप,
0: हेलो
1: फतेह जी, मन्नत जी.
0: हेलो हेलो हेलो हेलो. चलो अपा इस तरह करते हैं, फिलहाल कनेक्ट नहीं कर पा रहे उन्होंने नाल, ते अपा तेग नू ले लेने जी भाई.
1: ओ यस,
0: सही कि नहीं.
1: यप.
0: हेलो,
2: सत श्री अकाल
1: कृष्णा अंकल.
0: लगले में वीरा कहना हो. हेलो, बोल दे नहीं, आज की चक्कर हो गया
1: यार. जल्दी जल्दी बोलो, असि काले पे हैं थोड़ा चुटकला सुनने नू, बोली सुनने नू.
0: ठीक है, हां जी. कौन बोलदा, कौन पया जी? हुन कंफ्यूजन जी क्रिएट हो गई मेनू लगदा. मन्नत तुसी हो?
1: मन्नत
0: चलो वेरी गुड. हां जी, किवें हो? ठीक ठाक. की हो गया अज? हैरान हो के पहली बारी आ गई.
1: तैयार करके लेके आयो साडे लई?
2: अज मैं सुनाऊंगी एक बोली.
1: ओके,
0: लो जी.
2: सस मेरी ने सूट सवाया, पहुंचे खाले तंग, गिद्दे विच नचदी दे पूंड मार गया
0: डंग, गिद्दे विच नचदी दे पूंड मार गया डंग, गिद्दे विच नचदी दे पूंड मार गया
1: डंग.
0: यार सवेरे सवेरे बच्चों वायलेंस च आ गए हैं यार. फ्राइडे से आज
1: ते
0: है.
1: नहीं, मैनू तो गाना याद दुआता, कुड़ी बन के शहद दी मक्खी आयो डंग मार गई.
0: क्या बात है, क्या प्लेलिस्ट है. अमेजिंग, थैंक यू मन्नत, थैंक यू सो मच.
1: फतेह जी,
0: फतेह नाल कराओ फिर गल
1: जी, करा दियो जी.
2: सत श्री अकाल नोनी आंटी जी ने कृष्णा जी.
0: सत श्री अकाल फतेह
1: सिंह जी, की हाल चाल ने सुनियो मुनियो? बस तुसी वधिया, असि भी चढ़दी कला च. फिर
0: ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट. की चली जांदा तैयारी स्कूल दी?
2: अगे मम्मा सानू ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਸੀ
0: ਓਕੇ ਚਲੋ ਬਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰੀ
1: ਅੱਜ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ
2: ਅੱਜ ਤੱਕ
0: ਹੈਲੋ
2: ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮਾਦਰੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮਾਦਰੀ ਦਿਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਐਨਕਾਂ ਮੰਗੇ
0: ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਐਨਕਾਂ ਮੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਐਨਕਾਂ ਮੰਗੇ
1: ਬਲੇ ਬਲੇ ਬਲੇ ਬਲੇ ਬਲੇ
0: ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਮਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਐਨਕਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ
1: ਨੇ
0: ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਾਲਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇਗ
1: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇਗ ਜੀ
2: ਰਿਪੋਰਟ
0: ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ
1: ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ
0: ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਲੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਵੈਰੀ ਰੂਡ ਵੈਰੀ ਰੂਡ
1: ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ
0: ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ
1: ਹਬੀਬੀ ਹਬੀਬੀ ਫੁਰਤਮ ਫੁਰਤਮ
0: ਫੁਰਤਮ
1: ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਤਮ
0: ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂਨੀ ਆਂਟੀ
2: ਪਤਾ ਨਹੀਂ
0: ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ
1: ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇਗ ਜੀ
2: ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਗੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ

0: अच्छा उन्हें वो सड़क देखते होने ना कि खाली है कि नहीं है।
1: yeah, exactly.
0: वीरा वीरा पूरा इनटू है वो जॉब
2: दे। डंपलिंग्स कुशी देखिया।
0: वाह वाह।
1: I love dumplings squishies as well. Yum. अच्छा? You know you feel like chewing it.
0: अच्छा। अगले कॉलर ने साडे नाल अनाहत
1: सत्या
3: आंटी जी ते अंकल जी
1: सस्रीकाल अनाहत जी की हाल चाल ने जी
3: वदिया तुसी सुनाओ ताड़ा की हाल है
1: मेरा हाल ना पूछो पुत पूरी दिन नंग जाना है
0: अच्छा माय गॉड
1: एक डेंटिस्ट ने मेरा

0: वे सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
2: और जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ IME एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ IME एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
5: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
5: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: अज दा विचार अज दी कहानी हर रोज तुसी सुनदे हो शो हांजी मेलबर्न विच तुहाडी डिमांड उत्ते आओ एक बार फिर सुनदे हां इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी।
2: रेडियो हांजी 1674 AM दिस इज योर अपना आरजे पुनीत। समा हो चुका है अज दा विचार अज दी कहानी दा। कहानी कोई मोटिवेशनल या फिर इंस्पिरेशनल नहीं है, लेकिन आस करते हैं कि पसंद जरूर आवेगी। अद्धी रात भांडे खड़कण की आवाज, पानी की चलती टूटी, मां रसोई विच सी। तिने नूहां पुत कादे सौ गए सन पर वह जागती सी। खुरे विच खिलरे जूठे भांडे, कम सांझे टब्बर दा सी पर वह खुद ही सारी जिम्मेवारी समझती सी। नालों नाल दुध का पतीला गर्म हो रहा सी, अजे जाग भी लाना बाकी सी ता जो सारे अगली सवेर ताज़ा दही खा सकन। अचानक कच का गिलास भुंजे जा डिगा सदा सज्जे पैर दे अंगूठे ते। पीड़ हुई पर वह खुश सी, खड़ाक जू नहीं सी होया अते गिलास टुटनों भी बच गया। पर फिर भी सुते पए जाग पए। वड्डे पुत्तर दे घरों घरवाली आखण लगी, अद्धी रात हो गई, इसनूं नींदर नहीं पैंदी, ना आप सौंदी ना किसे होर नूं सौण दिंदी। विचले थां वाली बोली, हुण वेखणा सवेरे तड़के 4 बजे फिर तो खड़कड़ शुरू हो जाणी, ना आप चैन लैणा ना किसे होर नूं चैन लैण देणा। सब तो निक्की अपने घर वाले नूं बोली, प्लीज़ जाके आप पखंड बंद करवाओ, अखे आथण वेले जूठे हुए अगली सवेर तक नहीं छड़ने चाहिए, बदशगनी होंदी है। छोटा गया पर उदों तक मां सब भांडे सांभ चुकी सी, दबे पैर ही वापस मुड़ाया। लक दा कुब, चेहरे दियां झुरड़ियां, ढिलकी हुई चमड़ी, जोड़ां दा दर्द, गोडियां दी तकलीफ, अखां दा मोतिया, सरफे दे दंद, मुड़के दे नाल भिजिया शरीर, पैरां दी लड़खराहट, तां भी दुध दा गर्म पतीला नंगे हत्थां नाल ही चुक लिया। इन नूं वेख्या घड़ी दियां सूईयां भी बरोबर हो गईयां। अपने मंजे वल नूं जाण लगी, फिर वापस परत आई, फ्रिज अंदरों भिंडियां कढ़ियां सारियां कट दित्तियां अते फिर गंढे अते अदरक भी। फिर कुछ चेता आया, सराणे थल्लों पोटली कढ़ी, अंदरों अंदाजे जहे नाल गोलियां कढ फक्का मार लिया ते नाल पानी दे नाल अंदर लंघा गई। खोल खंघदे हुए घर वाले ने पुछया, आ गई है? आख्या तो सी अज ते रसोई विच कोई खास काम ही नहीं। मगरों पता नहीं नींदर पई के नहीं, पर तड़के अलार्म बाद विच वज्या पर वह पहला ही जाग पई। पोह माग दियां ठंडियां सवेरां नूं भी शायद ही कदे तत्ते पानी नाल नहाती होवे, आखे मैनू कड़ी ठंड लगती है, पर हरेक नूं वखरा गर्म पानी करके दिंदी। आप अखबार कदी ना पढ़ती पर गेट लाग्यों चुकनी उसकी जिम्मेवारी सी। खुद सारी जिंदगी कदे चाह नहीं पीती पर बाकियां दे लई प्यालियां ढक के जरूर रखती। कई बार सोचदा कि मां दे विषय ते लिखना बोलना सुनाउणा अते चर्चा करना यह बंद होना चाहिए। इस रिश्ते नूं किसी कसौटी ते परखना भी पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। जो खुद ही एक कसौटी होवे वह दूजी कसौटी ते किवें परखी जा सकती है। पर इस विषय ते भावें सारी जिंदगी गलबात करते रहिए कदे नहीं मुकेगी। कहिंदे ने ना, गमां दी रात लम्मी है जां मेरे गीत लम्मे ने, ना भैड़ी रात मुकदी है ते ना ही मेरे गीत मुकदे ने। हाँ, सच एक होर गल, जे सब कुछ सुनदिया रोना आ जावे तल कोयो ना ते ना ही डक्या करे, खुल के रो लेना पार हल्का हो जावेगा, सिर वजूद अते जमीर ते पिया होया। जे ज्योंदी जागदी मां कोल होवे ता जफ्फी विच लैके चुम लेना, अते जेकर पहला ही रवानगी पा गई है ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਂ ਜੋ ਹੋਈ

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME Advisor।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1670।

0: मुडिनाल मुडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सोखा अति सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अति बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलनगे
3: आहो जी आहो
0: अक्षर ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
4: सतकाल मैं हां जी शेरगिल ते तुसी सुन रहे हो रेडियो हां जी 1674 AM.

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हिटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: बात करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, the smart choice.
4: Mere naal ta koi khelda hi nahi, sab khol de lang jande ne.
5: वादवा प्रोडक्शंस अते पेनोरमा स्टूडियोज पेश करते हैं नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नू वेखण दी कहानी कणकां दे ओले।
6: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले दी।
5: स्टारिंग गुरप्रीत घुग्गी, तानिया, किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार।
7: हुण दसो मैनू कणकां दे ओले कौन।
5: रिलीजिंग ऑन 31st July।
7: दसो
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: था
1: यार। तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर, हां जी हां जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो। हां जी AM।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी, अभी ना कहना हांजी ना जी।
2: 1 2 3 4

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Arbaaz Khan and you're listening to Hanji Radio.

0: Baby, kom best passen.
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Haji 1674.
3: मेरे शहर दी सब तो चंगी खुशबू तेरे कोलों संग गई

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: प्रसाद को बिरला लाख है।
1: सो क्यों बिसरै जे बिकती गाड है, जन्म जन्म का टूटा गाड है।
0: गुरपुर ऐता ते है बुझाया, प्रभ अपना नानक जानते आया।
1: साजन संत करो हो काम, आंते आग जपो हर नाम।
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो।
1: भगत पाए त्रिये संसार, बिन भक्ति तन हो सी चार।
0: सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूट जात पाए विश्राम।
1: सगल दुख का हो तनास, नानक नाम जपो गुणतास।
0: उपजी प्रीत प्रेम रसचाओ, मन तन अंतर एही सुआओ।
1: नेत्रो पेत रस होए, मन बिकसै साधु चरण तोए।
0: भक्त जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग।
1: एक बस्ती जे कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया।
0: ताकी उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्ब समाए।
1: प्रभ बख्शन दीन दयाल, भगत वछल सदा कृपाल।
0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल।
1: आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार।
0: जो जो जपै सो होए पुनीत, भक्त पाए लावे मन ही।
1: हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान।
0: सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए।
1: अनक राज भोग वडे आई, हर के नाम की कथा मन भाई।
0: बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत।
1: पली सुकरनी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत।
0: साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास।
1: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठवीं श्लोक।
0: सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। अपन किया नानका, आपे ही फिर जाप। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
1: जब अकार कुछ न दृष्टि, ताप पुण तब कहते होता।
0: जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संग कमात।
1: जब इसका वरन चिन्ह न जापत, तब हर सो को किसे व्याप्त।
0: जब अपन आप पार ब्रह्म, तब हो कहां किस होवत परम।
1: अपन खेलिया वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा।
0: जब होवत प्राव केवल तानी, तब बंद मुक्त कहो किसको गानी।
1: जब एक हर गम अपार, तब नरक सुरक को कौन अवतार।
0: जब निर्गुण प्राव सहज सुभाए, तब शिव शक्त कहो हो कित ठाए।
1: जब आपे आप अपनी जोत धरे, तब कौन निडर कौन कत डरे।
0: आपन चले तब करने हार, नानक ठाकुर अगम पार।
1: अविनाशी सुख अपने आसन, तय जन्म मरण को कहा विनाशन।
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए।
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा।
0: जब नाथ नरंजन अगोचर गादे, तम कौन छुटे कौन बंधन बाधे।
1: आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा।
0: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तूता।
1: जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान।
0: जह स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लागत कहो कीस।
1: जह जो स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसै भू कौन तृप्तावै।
0: करन करावन करने हार, नानक करते का नाहि सुमार।
1: जापनी सुवा आपन संग बनाई, तब कौन माए बा मित्र सुत भाई।
0: जह सर्व कला आपह परवीन, तह वेद कतेव कहां कोचीन।
1: जब आपने आप उतारे, तो सगन अपसगन कहां बिचारे।
0: जह आपन ऊंच आपन आप नीरा, तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा।
1: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गज जानो आप।
0: जह अछल अछेद अभेद समाया, ऊहा किसह व्याप्त माया।
1: आपस को आपे आदेश, तेह गुण का नाही प्रवेश।
0: जह एक है एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता।
1: जह आपन आप पतियारा, तह कौन कथे कौन सुन नहारा।
0: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस को आप है पहुंचा।
1: जह आप रचियो परपंच आकार, तेह गुण में कीनो विस्तार।
0: आप पुन तह पई कहावत, को नरक को स्वर्ग बंचावत।
1: आल जाल माया जंजाल, हो मैं मोह परम पै पार।
0: दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार कियो बखिया।
1: अपन खेल आप कर देखै, खेल संकोच है तो नानक एक है।
0: जह अवगत भक्त है आप, जह पसरै पासार संत प्रताप।
1: रूपा का अपै धनी, उनकी शोभा उन्हों बनी।
0: आप है कौतक रै आनंद चोज, आप है रस भोगन निर्जोग।
1: जिस भावे तुस अपन ना लावै, जिस भावे तुस खेल खिलावै।
0: बेशुमार अथा अगंत अतोलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै।
1: सुख मनि सुख अमृत पब नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठ इक्की श्लोक।
0: जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया, दूजा कह दृष्टार। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
1: आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार।
0: जा तिस भावे ता सृष्टो पाए, अपने भाणे लए समाए।
1: तुम ते पिन्ने किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए।
0: जाको प्रभ जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए।
1: सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सिष्ट का जेता।
0: जी जंत्र सबता कै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ।
1: जिस राख है तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे।
0: तिस्ता जबर कहां को जाए, सब सिरे एक निरंजन राए।
1: जी की जुग जा कै सुभात, अंतर बाहर जानो साथ।
0: गुण निदान बे अंत पार, नानक दास दा बलिहार।
1: पूरन पूर रह दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल।
0: अपने करतब जाने आप, अंतर जामी रहो बे आप।
1: तत्पाले जी अनबो पात, जो जो रचियो सुत सहते।

0: जिस भावे तिस लय मिलाए भगत करै हर की गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया
0: जा लागा हर इक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए
1: सेवो को सेवा बने आई हुक्म बूझ परम पद पाए
0: इसते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसिया निरंकार
1: बंधन तोर पै निर्वैर अंधिन पूजै गुर के पैर
0: यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपह मेले
1: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद
0: राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार
1: अमृत वचन हर की गुण गाओ प्रांत ननकाए हे सुआओ
0: आठ पहर प्रापी खोह नीरा मिटै अज्ञान बिन सहंधीरा
1: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो
0: हलत पलत दोय लिहो सवार राम नाम अंतर उरतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिसमन बसै ते साच परीखिया
0: मनता नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी
0: टीका टीक रखो मन माही नानक बहर न आवै जाहे
1: इसते दूर कहा को जाए उबरे रख नहार ते आए
0: निर्भउ जपै सगल भउ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै
1: जिस प्रभ राखै तिस नाहि दुख नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार
1: सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कै कारज पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेख तु उदरत श्रिष्ट
1: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान
1: जिस मन बसे सोत निहाल ताकै निकट न आवत काल
0: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भल जना कै मन विश्राम 28 श्लोक
0: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला का मीठा
0: सगल समिगरी एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे
1: नौनद अमृत पव का नाम देही में इसका विश्राम
0: सुन समाध अनहत तै नाद कहन न जाई अचार्य विस्माद
1: इन देखिया जिसे आप दिखाए नानक ते संसो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहे आप भगवंत
1: करण माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
0: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड दै दिसै समाहे
0: जिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक
0: वाणी प्रभु की सब को बोलै आप अडूल न कबहु डूलै
1: सर्व करा कर खेलै खेल मोल न पाइए गुणे अमोल
0: सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत धार हे ओ स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं एहो विसास
0: संत जना का पीखन सा ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सो इश्क मान करन करावन हर प्रभ जान
0: अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सा मोही
1: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत
0: तिस भावे ता करे विस्थार तिस भावे ता एकंकार
1: अनक कला लखी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए
0: कवन लिप्त कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर
1: अंतरगा जिस आप जनाए नानक तिस चन आप बुझाए
0: सर्व भूत अवतारा सर्व नैन आपे खनहारा
1: सगल समगरी जा का तना आपन जस आप ही सुना
0: आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
1: सबके मदल पत्तो रह जो कुछ कहना सो आपे कह
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लए समाए
1: इसते होए सुनाही बुरा उरे कहो हो किने कुछ करा
0: आप ला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की
1: आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संग्राह
0: ताकि गत नित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए
1: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लए प्रभ सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान
0: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया
1: जा नामन कहे सुआओ जन कह संचित आवे नाओ
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भग जना के मन विश्राम 28 श्लोक
0: पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे
0: सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद
1: आस नित्या गोतरंग संत जना की दूर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरहो
1: हर तन की भर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दुमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन अमोलीक लाल एह रतन
0: संत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक कह निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे
1: प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उतरे तिन ਵਚਨ ਕੈਸਾ ਤੇ
0: ਸ਼ਰਨ ਯੋਗ ਸੁਣ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ
1: ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭੈ ਸਵਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਲੈਨ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ
1: ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਰਸ ਨਾ ਕਹਤੇ
0: ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ
1: ਤਬ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ
1: ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ
0: ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ ਬਹਰ ਨ ਹੋਵੇ ਆਵਨ ਜਾਨ
1: ਹਰ ਦਿਨ ਖਾਟ ਚਲੇ ਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
0: ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹਿ ਸਿੱਧ
1: ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪਵ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ਼ੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾ ਸਭ ਕੈ ਮਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ
1: ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੀਤਾ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
0: ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ
1: ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ
1: ਸਗਲ ਮਤਾਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ
0: ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਨ ਤੇ ਛੁਟੈ
1: ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਪਾਏ ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ
0: ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਮਰਨਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ
1: ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਪੈ ਪਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ
0: ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ 8:24 ਸਲੋਕ

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, स्वागत है आप सबका इस प्रोग्राम में। अभी तक जो हमने बातचीत की है उस पर हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या खुशी हमारे अपने अंदर है या फिर उसे हम बाहर तलाशते हैं, और अगर बाहर तलाश रहे हैं तो वो खुशी ही है या फिर कुछ और। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका फिर स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत, ओम शांति। शिवानी जी, अभी तक हमने आपसे जो बात की, जो जाना, वो ये कि खुशी हमारे कहीं अपने अंदर है, हम अंदर से खुश हैं, भरे हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम खुश हैं। और जो पिछली बार हमने बात छोड़ी थी वो ये था कि एक थॉट हमारा, एक जो एक संकल्प की बात करते हैं या एक जो भी थॉट आता है वो हमारी डेस्टिनी बन सकता है।
1: हमने वो पूरा प्रोसेस भी देखा,
0: एक पूरा
1: आपने वर्क किया, आपने देखा उस
0: बिल्कुल
1: प्रोसेस
0: को। मैं उसी पे आ रही थी क्योंकि मैं यहाँ से सुन के तो गई, सीख के गई, लेकिन जब मैं पहुंची, अपने काम पे पहुंची और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो बीच में आते आते तक वो सफर कहीं अटक गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि थॉट से फीलिंग जनरेट हुई, फीलिंग से एक्शन जनरेट हुआ,
1: फीलिंग से एटीट्यूड बनता है,
0: हाँ एटीट्यूड बना, एटीट्यूड से कहीं एक्शन बनता है, एक्शन के बाद क्या था जो डेस्टिनेशन बना, डेस्टिनी बना।
1: सी, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम सारा दिन वो साइकिल की अवेयरनेस में रहे, तो वो तो फिर बहुत यू नो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ओ दिस इज माई थॉट, नाउ इट्स जनरेटिंग अ फीलिंग, दिस इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स की पहली बात हमें नॉलेज होनी चाहिए कि दिस इज अ प्रोसेस, यू नो जैसे एक प्लांट लगा, एक मशीनरी लगी है, हमें उसके प्रोसेस की अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर हमें पता होगा कि जो एंड प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है, उसका रॉ मटेरियल क्या है। तब अगर हमें एंड प्रोडक्ट नहीं पसंद आता तो हमें पता होगा कि उस प्रोसेस के अंदर कहां हमें रेक्टिफिकेशन करनी है, लेकिन अगर हमें प्रोसेस ही नहीं पता तो फिर क्या होगा, एंड प्रोडक्ट अगर हमें पसंद नहीं आए तो हमें पता नहीं चलेगा कि परिवर्तन कहाँ करना।
0: ओके, और परिवर्तन हम बीच की स्टेज में भी कर सकते हैं,
1: कर भी नॉट रियली। हम परिवर्तन करते हैं पहली बात रॉ मटेरियल की स्टेज में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अंदर क्या फीड हो रहा है रॉ मटेरियल वो प्ले कर रहा है, एंड इम्पोर्टेंट है प्रोसेस को जानना ताकि ये पता चलेगा कि ये रॉ मटेरियल अंदर जाने के बाद किस प्रोसेस से गुजर के फाइनल उस प्रोडक्ट को बनाता है जिसको हम कहेंगे अपनी पर्सनालिटी। तो हम जो इन्फॉर्मेशन अंदर फीड कर रहे हैं चारों तरफ से, सारा दिन हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट ऑल दिस, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, बिकॉज हर चीज जो अंदर जा रही है इट्स द रॉ मटेरियल।
0: जैसे आर्ट जनरेटिंग,
1: हाँ, जैसे आप अपने मुख से गलत तरह का भोजन अंदर नहीं डालेंगे ना, क्योंकि आपको पता है ये अंदर जाके कहीं ना कहीं नुकसान करने वाला है। तो नाउ जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, देखो पहले हम इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया। अब जब हमें समझ में आने लगा कि एक एक चीज जो हम अंदर डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंदर नुकसान कर रही है, बीमारी जनरेट हो रही है, तो हम ध्यान रखने लगे क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन सा पानी पीना कौन सा नहीं पीना। इसी तरह जब हमें समझ में आ गया कि सारी इन्फॉर्मेशन जो हम अंदर फीड कर रहे हैं वो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी को बना रही है, अब ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाता है क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़। पहले क्या होता था, पहले हम कुछ भी पढ़ लेते थे, मैगजीन उठाई पढ़ते गए, पेज टू पेज एंड तक पहुंच गए, न्यूज़पेपर उठाया सब कुछ पढ़ लिया, ये नहीं रियलाइजेशन थी कि ये एक एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अंदर वर्क करने वाले हैं। तब ये लगता था हम किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इट्स नथिंग टू डू विद माई लाइफ, सो आई नेवर रियलाइज दैट दिस रॉ मटेरियल इज क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी। अब जैसे ही वो प्रोसेस समझ में आ गया आई एम अ लिटिल केयरफुल, अगर आप आए और आप मेरे पास बैठकर इधर उधर की बातें की, डैमेजिंग बातें की, टॉक्सिक नेगेटिव बातें की, ये ऐसा है फलां व्यक्ति, पहले आई वुड टेक इट एज एंटरटेनमेंट, चलो टाइम पास हो गया, गॉसिप जिसको हम कहते हैं, यहां वहां इसकी बातचीत कर ली, तो क्या हुआ आधा पौना घंटा बीत गया। नाउ आई विल बी लिटिल केयरफुल कि ये हर एक बात जो मैं आपकी सुन रही हूं ये अंदर जा रही है, ये मेरी थॉट की क्वालिटी को अफेक्ट करने वाली है, ये मेरी पर्सनालिटी, मेरी डेस्टिनेशन क्रिएट करे।
0: इनफैक्ट शिवानी, ये अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो सदियों से हमें कहते आ रहे हैं बड़े बूढ़े भी कि सही सुनना चाहिए, सही यू नो बात कहनी चाहिए, क्योंकि दैट रियली मैटर्स। नाउ प्रैक्टिकली वी कैन सी इट हाउ इट रियली अफेक्ट्स अस।
1: देखो पहले जो हम चीजें करते थे ना, दे वर सो साइंटिफिक, इतनी लॉजिकल। पहले हमें बचपन में बताया जाता था कि सुबह उठ के भगवान को याद करो, गायत्री मंत्र पढ़ो, या कुछ भी, हर एक के लिए जो भी था कोई अच्छी चीज हम पढ़ते थे या सुनते थे। तो इट वॉज साइंटिफिक ना कि सुबह सुबह उठकर आपको सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो लेनी है वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन।
0: और आपने अभी जो पीछे एक बार बताया था एक एपिसोड में कि ब्लॉट यू नो लाइक हम सारे इन्फॉर्मेशन ब्लॉटिंग पेपर की तरह,
1: अभी हम क्या करते हैं सुबह उठकर एक हाथ में न्यूज़पेपर, दूसरे हाथ में रिमोट कंट्रोल, उधर टेलीविजन चल रहा है, तीसरे किसी बच्चे के कमरे में लाउड म्यूजिक चल रहा है। सो द फाउंडेशन ऑफ द डे इटसेल्फ इज ऑन अ डिफरेंट नोट। तो फिर उसके ऊपर एक्सपेक्ट करना कि पॉजिटिव थॉट्स जेनरेट हो, वी आर लुकिंग फॉर द इम्पॉसिबल। हमने वो अंदर इन्फॉर्मेशन भरी ही नहीं। तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो हम भरते हैं और हमारे बिलीफ सिस्टम्स,
0: जिस तरह से आप कह रही हैं शिवानी कि अगर एक थॉट जो हमारा जनरेट हो रहा है वो हमारी डेस्टिनी बन सकता है और हमारी डेस्टिनी निर्धारित कर सकता है, इसका मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम हैज टू बी वेरी राइट। एक्चुअली
1: वेरी राइट, एंड दैट्स व्हाई टाइम टू टाइम इट्स इम्पोर्टेंट कि हम बीच बीच में रुक रुक के उसको इवैल्यूएट कर सके
0: कि क्या
1: कि हम ठीक धारणाओं पर चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ चेंज की जरूरत है।
0: अगर हमने बात टेंशन की करते हैं, क्योंकि टेंशन हम एक आज मुद्दा उठाना चाह रहे थे, हम जानते हैं कि वो एक सच्चाई बन चुका है, यू नो टेंशन है, कदम कदम पर टेंशन,
1: टेंशन है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है।
0: यस,
1: टेंशन होनी ही चाहिए, यू नो टेंशन तो हर एक को है। अगर आप किसी से पूछो भाई आपको टेंशन तो नहीं है कोई, तो ही लुक एट यू एज इफ यू आर आस्किंग यू नो
0: टेंशन नहीं है,
1: दैट इज अबनॉर्मल। तो वो कहेंगे टेंशन तो जी हर एक को है। तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। आपको कैसे पता कि हर एक को नहीं है, है ही हर एक को। तो टेंशन हर एक को है आज, ये भी एक मान्यता है।
0: अच्छा, तो इस मान्यता को नहीं माने हम।
1: एक्चुअली हमें दूसरों के बारे में हमें पता ही नहीं होता ना। आई डोंट रियली नो कि आपको कितनी टेंशन है, आपको मेरे बारे में नहीं पता है, हमें अपने बारे में ही पता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको बात को इतनी बार री इन्फोर्स कर देते हैं, टेंशन है ही, टेंशन है जी, बड़ी टेंशन है जी, बड़ी टेंशन है बड़ी, वो बार बार उसको और होनी ही चाहिए। तो इट्स कंसिडर्ड लाइक इट्स ग्लोरिफिकेशन, यू नो जितनी आपको टेंशन है मतलब आप उतने एफिशिएंट हैं। अगर आप टेंशन के बिना बैठे हैं अभी तो यू विल बी कंसिडर्ड एज,
0: आपको कोई टेंशन नहीं है। यू नो लाइक उसको
1: मे बी यू आर गुड फॉर नथिंग, मे बी यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट इन लाइफ, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है।
0: अच्छा, एक और बिलीफ ये है कि अगर कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ यू नो कोई अगर एग्जाम देना है तो टेंशन होनी चाहिए, एंग्जाइटी होनी चाहिए, तभी तुम अच्छा एग्जाम दे पाओगे, अच्छा परफॉर्म कर पाओगे।
1: जो सबसे पहला रॉन्ग मतलब रॉन्ग कहे या जो भी बिलीफ सिस्टम है वो है कि टेंशन नेचुरल है। यू नो किसी से भी आप कहेंगे तो टेंशन तो नॉर्मल है। टेंशन ना होना ये अब नॉर्मल गिना जाता है, टेंशन नॉर्मल है। नाउ यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस कि डू यू रियली फील टेंशन नेचुरल है।
0: नो आई डोंट थिंक सो।
1: You know, we accept it as the most common thing.
0: No, but if I think, no, we accept it because it's there.
1: Right. You know,
0: but like we have been thinking about it.
1: True.
0: But if we really think about it, अगर मैं आज बैठ के आपने मुझे कहा पॉज दिया, मैंने सोचा कि it should not be natural.
1: हाँ, वो क्या हो जाता है, जैसे एक एपिडेमिक नहीं फैल जाता है किसी शहर में, तो अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन को वो बीमारी लग जाए तो आप धीरे धीरे ये समझने लग जाए कि वो बीमारी ही एक राइट यू नो फिजिकल हेल्थ है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन अगर ये सबको पकड़ी हुई है आज, या मेजोरिटी को पकड़ी हुई है, बट दैट डजंट मीन कि वो ही फिटनेस है। इट इज अननेचुरल, और वो खुद से हमें तभी पता चल जाता है क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देती। जब हम चिंता से ग्रस्त होते हैं, चाहे वो किसी छोटी सी बात को लेकर है या कोई बहुत बड़ा इशू हो सकता है, चाहे वो छोटी सी बात हो कि आज जो मेरे घर काम करने वाली मेड आती है सुबह वो नहीं आई, यू नो, तो इमिजिएटली द लेडी ऑफ द हाउस इज लाइक वो आई नहीं, क्यों नहीं आई, ये है वो है, यू नो, एंड द होल एनवायरमेंट ऑफ द हाउस, पूरा वायुमंडल, ये छोटी सी बात की टेंशन।
0: बस छूट गई बच्चे की एग्जाम है, क्या होगा,
1: ट्रैफिक जाम में अटक गए,
0: बिल्कुल,
1: यू नो, बहुत छोटी छोटी बातों की टेंशन है, एंड देन गोइंग टू bigger issues, whether it is career or
0: तो ये tensions हैं।
1: हाँ, मेरा तो जब आपकी स्थिति है ना वैसी, तो now you will have to check to create a belief कि ये natural है या नहीं है natural। natural वो चीज होगी जो comfortable feel होती है। यू नो नेचुरल मीन्स व्हाट, जैसे चलना नेचुरल है, भागना
0: अननेचुरल है,
1: नेचुरल इज वॉकिंग या तो क्या करेंगे आप चल सकते हैं ज्यादा देर, लेकिन अगर आप भागना शुरू कर दें आप थोड़ी देर भाग सकेंगे, थोड़ी देर के बाद आप थक जाएंगे। तो सिमिलरली टेंशन लेना लेना लेना, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी बिकम एग्जॉस्टेड एंड जब हमारा मन वो टेंशन की स्थिति से गुजर रहा है हाउ आर वी फीलिंग, दर्द है कहीं ना कहीं, एक आंतरिक दर्द है और वो आंतरिक प्रॉब्लम बाहर किसी न किसी रूप में निकल कर आती है गुस्से में या चिड़चिड़ापन में।
0: Definitely.
1: तो उसको हम नेचुरल कैसे कह रहे हैं? नेचुरल इज कम्फर्टेबल, आई एम सिटिंग हियर वेरी नेचुरली, व्हाई आई एम कम्फर्टेबल। अभी इफ आई क्रिएट सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड पोज आई विल से दिस इज अननेचुरल, सो वेरी सून आई नीड टू लाइक गो बैक टू माई नेचुरल।
0: व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज लाइक टेंशन सहज है ये हमें नहीं मानना, दिस इज
1: हाँ, क्योंकि अगर हमने उसको ये मान लिया कि ये नेचुरल है तो फिर हम उसको निकालने का ये नहीं करेंगे। अब देखो आज शाम को आप घर जाएंगे, अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा बुखार है आप थर्मोमीटर पे चेक करेंगे, सपोज योर थर्मोमीटर शोज 99 point something और समथिंग, यू नो इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल क्या है, यू नो, सो यू विल वेट टिल द मर्क्यूरी कम्स टू दैट एरो। तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत दवाई ले लेंगे क्योंकि आपको पता है कि 99 नॉर्मल नहीं है, दैट नॉलेज इज देयर। अगर आपको ये नॉलेज दी जाए कि 99 नॉर्मल है तो जब अगर थर्मोमीटर 99 दिखाएगा तो आप क्रोसिन नहीं लेंगे। कल अगर आपको ये नॉलेज दी जाए कि 100 नॉर्मल है तो आप 100 पर भी क्रोसिन नहीं लेंगे, 100 जैसे ही क्रॉस हो गया आप क्रोसिन लेंगे। यू सी यू हैव टू नो व्हाट इज नॉर्मल, आई हैव दैट नॉलेज,
0: प्रोसेस वी हैव एक्चुअली टेकन इट कि टेंशन
1: नॉर्मल है। अब थोड़ा सा आपको बुखार हो जाए आप क्रोसिन लेते हैं, क्यों रहने दीजिए ना, कल तक ठीक हो ही जाएगा। नहीं, मुझे ठीक होना है क्योंकि कल यू नो आई हैव टू गेट बैक टू वर्क। अब टेंशन है बढ़ रही है डे बाय डे इट्स गेटिंग, लेकिन हम उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे,
0: नहीं ले रहे
1: क्यों? क्योंकि हमने सोचा यही नेचुरल है। तो उसको जब नेचुरल के पैरामीटर पर ले आए तो एक्सेप्टेंस हो गई कि ये तो नेचुरल है।
0: अच्छा, उससे दिस इज रॉन्ग बिलीफ एंड देन द थॉट क्रिएट,
1: या तो टेंशन। अब अगर जैसे ही हमने ये अपनी बिलीफ को चेक किया एंड आई स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ दिस इज अननेचुरल, दिस इज अनकंफर्टेबल, दिस इज कॉजिंग पेन, आई डोंट वॉन्ट इट।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।

गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की,

0: कार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
0: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
0: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टंच विच वी तुहाडी सेवा विच

0: चलो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर स्टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: डकैत तो साडे सारे दे अंदर होता है मौका मिलता है जो हाथ लगता है वो लुट लेंदा है
2: सिर्फ फिल्म ही नहीं ए है पंजाब दी सब तो वड्डी चोरी द ग्रेट पंजाब रॉबरी
1: जदो एक जोकर तख्त ते बैंदा है तो राजा नहीं बनता वो पूरे राज नू सर्कस मना लैंदा है
2: स्टारिंग राज कुंद्रा पायल राजपूत गर्विता सधवानी अते होर कई साथी कलाकार 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच
3: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

तुम्हारा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर

0: जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
1: हाँ जी रेडियो।
2: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है
3: मेरे, मेरे, मेरे,

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।